चितेनिक तो गोल ले कसर ताब्रो वो चेनो अगेन को नी तो उसको इच्छा चिके गोल से थी नहीं ले पेटू तक तो गोल लुकबो का मनुत इन कसर वो चुचन ये कैसे भी गोल से अगे मिन कैसे एक चैनन को मुझे तने ने के नवा इगेस रोड चेम याच को अब तीन दिन तीन जंगल लगती है को गोल लगे स्वेच चबुआने इन जोकी नेट अब जब मंगे मेंगे में उद चौथन को अराका WH11 अक हराका WH301 चित्तौरे का सरताबी तुझे दिसाई नी अब ये बोगा लगेंगे अक्टिव टेम गिट्योग असीगेस कम बुनिता वेस्टर्न सीड को तुझे के स्वेक अलग हु अमेरिका 403 चीबे का सरता ने नुआच असीगेस अगुबु आने को करारन कुन्यली लेन अमेरिका 505 चिमंगे में म्यानुआ गे अगुबुन रूद चेम्याच अमेरिका 507 चितिन्य मोबे चेगी मेन अगुन्यली लेन गुबातो करारन इन साइलेज अमेरिका 508 चिगेसे ने बांडे के चांग अगुबुन रूद चेमितन बराग मेन को सीरिन का सारे तन बरोब तन नुआच केरी इलेगे बैसेन के स्वेक चेया नौतीन गुबुन वेस्टर्न सीड मेस रूटेजन राइनी अग्रोडीला अग्रोवेट डिस्ट्रीब्यूटर तुपांडे अनको केवे आउटलेट अगतुगुल ने नेगतेनन एंटे बुट अगतुगुल इबिरसी मेट को नंबर 0705 505 505 अननीय ची तो दुजे टैब मेसे टैब टैग एफएम वेस्टर्न सीड कंपनी ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी टू द फार्मा.

ये भी मुझ चौगा जिन्हें कहते कुल 20,000 हमें जो ये नौ भी तो हमें रुने अभी ती ता गएंगे जिधर रेगुरे फिल्मोन ऐसा ऐसा ना कागो जो चिके 20,000 सो उन्हें तो मैं भी कहूँगा ना गप्चे भी चाहो तो मुझ सिव यागे गुई है हमें जाप चेको नहीं कर सकते ना अगर हमें जो गप्चे ही लबत वास हमें जाप चाले इन भी गएंगे आगाजी वो जम्मू तो मिन्जो सोगो नगो इंगुनी इतने परांडा न्योर चिके 20,000 डायरेक्टली इजु तू गिचो अगो तू याक चिको कों कों मिन्जो रोमो के में जबी गाएंगी कों के कोने पर नास को माया को यागा तारे तिन को रामु मेले निले के बच्चेरा बंदे त्या सिलिंग दिप्तम को जगा नंगो ससम आया आया को पी का लगाए गन्यो ने कुमाले आन्यो को भी तुने भी चुमी भी चिका को बसो को नी अगो तो न्योर चिको इंगुनी कों को जम्मू आगे ना का जबी जो तो गाए इंगिजे Kongo tu gai nyuwa kuto minyoru bona sina ile barando le ngung na banyoru bona singuni ana minyoru 20,000 mi na ga no meje ta mo gonyo ki na ma gene gitongon ko jutu status 74 ash kerwa gitona ko duge number 2 status 74 ash to get number 2 imagine nge kwa tumeenda status 74 ash to get number 2 ololo ira gasene nyu jutu nguni iger kwa ngute ingzi mengu nataka uingie Status 74 ash doget number. Raza nyo doget number gabe. Doget number 2. Ame ja go ni baranda ago ni tindang nyo. Ya to ko li chutu. Nataka I wimbo ikutie moyo. Inyo so go ni status 74 ash la patako doget number 2 aragaraka. Ke chutu nton. Status 74 ash number 2.